सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948, बैसाख माह की तिथि 19, तदनुसार मई 9, ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे के ज्योति के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे संथाली लोकगीत। सुबह के 9 का समय होगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप चर्चा के साथ सुनेंगे भेंटवार्ता बच्चे मन के सच्चे। भेंटवार्ताकार होंगे चिन्मयी दत्ता, उनसे बातें करेंगे आशा पिंगुआ। सुबह के 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह के 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। दोपहर के 1:20 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 2:55 पर आकाशवाणी रांची से। 3 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। मुख्य समाचार का प्रसारण होगा शाम के 4 आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। मुख्य समाचार का पुनः प्रसारण होगा शाम के 5 आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे शाम के 5:02 पर। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा करेला लौकी और खीरा की खेती। उसके बाद आप सुनेंगे होलो गीत मोतीराय गोडसोरा और साथी के स्वरों में। मौसम के जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे कुरमाली लोकगीत, कलाकार होंगे संतोष महतो और साथी। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। संध्या 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सातरंग का। शाम के 6:30 का समय होगा आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम। शाम के 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से ही सुनेंगे जिले में आजकल। शाम के 7:15 का समय होगा श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9। रात्रि 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत के ज्योति के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के ज्योति के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

कार्यक्रम जोहार चाईबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म इजाजत के इस गीत से आशा भोसले के स्वर में।

रजनीगंधा, अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म राजपूत से, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

0: अभी आपने सुना फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। आइए अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को

0: मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
1: नाम है रंगबला देवी, गाँव बारू हतो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जा है।
2: नितुम बुरान सिंह तामसाय अनिता तामसाय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना यापा में रिया तपा में रिया वा बेटा निका
3: अन्या नितुम दो बुंबाई कोड़ा पटन नितुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन नितुम कितमई कोड़ा मिनिमल पुरी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल में या
4: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से आज जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिल आप ही लेता ना।
0: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अभी आप सुन रहे थे जरूरी संदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जौहर चाईबासा। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जीवन एक संघर्ष है। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की।

जुनून, अभी आपने सुना इस फिल्म का ये गीत कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कभी अजनबी थे हम। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को

0: मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा

0: और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: Exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मामले में एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के नीमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में कल देर शाम एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। उपायुक्त राम निवास यादव ने स्वयं घटनास्थल और अस्पताल जाकर घायलों का हाल चाल जाना। उपायुक्त ने लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा है।
1: ड्राइवर ने ट्रक को अनियंत्रित होके पूरी मार्केट में उसने घुसाया है, बहुत लोगों को टक्कर मारी है। यहाँ जो अभी इंजर्ड है और धनबाद में भी जो हमारा सरपी हॉस्पिटल है, जेपी हॉस्पिटल है, पीएमसीएच है, वहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो भी वहाँ पे पहुँचता है उसको सही समय इलाज करा जाए।
0: रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में बांग्ला सांस्कृतिक मेला 2026 की भव्य शुरुआत हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में बांग्ला संस्कृति के अमूल्य योगदान की सराहना की। रांची सदर अस्पताल में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान थैलेसीमिया मरीजों के जज्बे और उनके जीवन के संघर्षों को सम्मानित किया गया। विशेषज्ञों ने सुरक्षित रक्तदान और इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में इसे रोका जा सके।
2: गजल मशीन हमारे यहाँ हर जगह है, सदर अस्पताल में भी कंफर्मेटरी जांच होता है, रांची में विशेष व्यवस्था है और रांची में पेशेंट्स भी काफी हैं, क्योंकि हम लोग स्क्रीनिंग ज्यादा करते हैं तो ज्यादा पेशेंट्स निकलते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम लोग सबके लिए ब्लड की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं।
0: राज्य में 14 मई तक रुक रुक कर बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने विशेष रूप से आज के लिए रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड को खेल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर राज्य में खेल विकास की नई रूपरेखा साझा की। बैठक का मुख्य फोकस 2036 ओलंपिक रहा। चीन में चल रहे एएफसी अंडर-17 महिला एशियन कप से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय टीम ने लेबनान को 4-0 से करारी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुरुआती हार के बाद टीम ने यह शानदार वापसी की है। झारखंड के लिए यह गौरव का पल है, क्योंकि इस टीम में राज्य की 4 स्टार खिलाड़ी हैं। एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमणि कुमारी, अनुष्का कुमारी और दिव्यानी लिंडा इसमें शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शुभेंदु बंगाल के अधिकारी। प्रभात खबर के शब्द हैं, जेटेट मामले में 5 मंत्रियों की कमेटी तय करेगी जिलों के लिए भाषा। हिंदुस्तान वेतन घोटाला मामले में लिखता है, बोकारो से कई दस्तावेज लेकर लौटी जांच टीम। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, गिरिडीह में लोगों को रौंदते हुए बाजार में घुसा ट्रक, 5 लोगों की मौत। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। गिरिडीह पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर या 200 रुपए सब्सिडी देने का किया अनुरोध। राज्य जिला प्रशासन आज करेगा निजी स्कूल

के साथ बड़ी बैठक, आरटीई नियमों के पालन पर प्राचार्यों को दिए जाएंगे सख्त निर्देश। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज के लिए जारी किया ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड ओलंपिक संघ के बीच हुई अहम बैठक, 2036 ओलंपिक के लिए राज्य में बनेगा विशेष रोड मैप। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत कलाकार हैं निलय कुमार साहू और साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी के महक। आज आपने सुना उड़िया लोकगीत कलाकार थे नीलय कुमार साहू और साथी। ये आकाशवाणी का

श्रोताओं, उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, आज 9 मई के दिन मुख्य रूप से महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, साथ ही यह विजय दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। 1945 में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद में मनाया जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के 13वें राजपूत शासक थे, जो मुगल बादशाह अकबर के सामने झुकने के बजाय जीवन भर संघर्ष और वीरता के प्रतीक बने। तो श्रोता, विविधा कार्यक्रम में भेंट वार्ता के जरिए चिन्मय दत्ता जानकारी दे रहे हैं। विषय है बच्चे मन के सच्चे।

0: सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं।
1: मैं चिन्मय दत्ता चाईबासा का निवासी हूँ
0: अच्छा
1: और पिछले 22 साल से नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ा हूँ
0: अच्छा
1: और उसका संगठन है पाठक मंच, जो
0: अच्छा
1: बच्चों से जुड़ा हुआ है। देश भर में इसके बहुत सारे ब्रांच हैं और मैं चाईबासा देखता हूँ।
0: अच्छा
1: बच्चों के साथ अनुभव 22 साल का है।
0: अच्छा और इसकी शुरुआत आपने कैसे की थी?
1: बच्चों को आरंभ में ड्राइंग सिखाते थे
0: हाँ,
1: एक शौक से,
0: अच्छा
1: और वो जो समय था ना, वो 2005 का बात कर रहा हूँ,
0: अच्छा हाँ
1: 2004-5 ये सब समय था जब स्मार्टफोन नहीं था।
0: अच्छा
1: तो एक बार अखबार में छपी पाठक मंच के सदस्यता हेतु तो संपर्क करें,
0: अच्छा
1: तो हमने उसको उठाया और फोन किया। तो PNT फोन था उस समय।
0: हाँ
1: संपर्क करने के बाद हमें उस समय का मेंबरशिप मिला और चलते रहे चलते रहे, आज पाठक मंच 22 साल पार हो गया।
0: अच्छा तो आपने काफी योगदान दिया है उसमें, उस
1: जी,
0: संस्था
1: बच्चों के साथ जुड़ा हूँ और पाठक मंच को 2013 में सर्वश्रेष्ठ पाठक मंच के तौर पे सम्मानित भी किया गया है
0: में। हाँ,
1: नई दिल्ली बुलाकर।
0: अच्छा। शुरुआत में जब आपने ये काम शुरू किया था तो उस समय कितने बच्चे थे? हाँ
1: उस समय नहीं थे, धीरे धीरे बढ़ाए,
0: हाँ
1: और आज भी वो पुराने बच्चे जो युवा वर्ग हैं
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: नए बच्चों को साथ देते हैं, वो भी
0: अच्छा
1: आते
0: अच्छा
1: हैं। समय के साथ बच्चों बदलते रहे
0: हाँ,
1: और आज भी चल रहा है।
0: यानी कि बच्चे बड़े होते गए फिर वो निकलते गए उस पाठक मंच से, है ना?
1: वो जब बड़े हुए ना, तो आज जब कार्यक्रम होते हैं तो बड़े भी आते हैं छोटे भी आते हैं।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और काफी साल आपने उसमें योगदान दिया है और बच्चे भी आना शुरू करते, उन्हें भी अच्छा लगता होगा, है कि नहीं? और
1: जी,
0: आपने क्या देखा, बच्चों में क्या चीज की कमी है?
1: बच्चों में
0: आपने खूब जुड़े हुए बच्चों से, तो क्या चीज की कमी आपको नजर आई?
1: बच्चे जो है ना, कच्चे मिट्टी की तरह है,
0: हाँ
1: उसे जैसा रूप दिया जाएगा वैसे ही होगा।
0: जी
1: तो बच्चों को प्यार दिया जाए, उसे सिखाया जाए, उसे डांटा डपटा कम जाए,
0: हाँ
1: उसे उसे कम डांटना चाहिए, जहां तक हो उसे प्यार से समझाना चाहिए,
0: जी
1: और उससे

0: इस प्रकार बात करें जैसे कि ये पेन लेके आओ, ये नहीं, मेरा बेटा जाएगा और पेन लेके आएगा तो बच्चा लेके आएगा, उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना डालना है बच्चे में, उससे ये डांट कर नहीं बोलना है कि कलम पेन लेके आओ, उससे कहना मेरा बेटा जाएगा पेन लेके आएगा, इस तरह की भावना होनी चाहिए बच्चों में, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए
1: जी।
0: उनको माने अभिभावक को ध्यान देना, माता पिता को,
1: तभी वो आगे बढ़ पाएंगे।
0: हाँ, उसे डांटा नहीं जाए, धमकाया नहीं जाए, उसको प्रतियोगिता की भावना से बात की जाए।
1: जी हाँ।
0: और आज का जो वर्तमान दौर है,
1: हाँ,
0: इसमें बच्चे मोबाइल में उलझे हुए हैं, उसको उसके लिए उसको अलग प्लेटफॉर्म किसी तरह से तैयार किया जाए।
1: अच्छा।
0: कि बच्चे मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाए, कोशिश करें कि स्कूल के किताब, कहानी के किताब जो आज उसको उसको पढ़ाने की कोशिश किया जाए, जहां तक हो सके मोबाइल से दूरी बनाए
1: जी।
0: बच्चों के लिए
1: देखिए
0: दिक्कत कर रहा है।
1: हाँ चिन्मय जी, आप जो आज के जमाने में ये हो नहीं पा रहा, पहले तो बच्चे होते थे कि जैसे शाम होती थी तो वो भाग जाते थे मैदान, वहाँ फुटबॉल खेलते थे, बहुत तरह का खेल वगैरह खेलते थे
0: जी।
1: अब जो है वो गेम जो है वो अब अपने हाथों में आ गया है, इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है बच्चों पर।
0: हाँ, मैं उसी विषय में बात कर रहा हूँ।
1: हाँ,
0: तो उसे समय रूटीन बांधा जाए कि कुछ समय ये करो, कुछ समय वो करो। दरअसल इसमें बच्चों का पूरा दोष नहीं है, समाज में फोन आ चुका है
1: जी।
0: माता पिता दादा दादी हर किसी के पास फोन है, तो बच्चा तो फोन मांगेगा ही ना
1: जी।
0: ऐसे समय में बच्चों का मन बहलाव के लिए हमें उसके साथ देना पड़ेगा कि आओ थोड़ी देर के लिए हम लोग कहानी किताब पढ़ते हैं
1: जी। हाँ।
0: बच्चे को अपने पास लाना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा
1: जी।
0: क्योंकि जो वर्तमान दौर है ना वो काफी स्पीड हो गया है
1: जी। हाँ हाँ
0: हाँ, इसको ध्यान देना पड़ेगा अभिभावक को।
1: और आप अपने मंच में बच्चों को किस तरह क्या क्या चीज सिखाते हैं?
0: बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइंग सिखाते हैं। अच्छा। पहला बात, उसे आर्ट कला पे ध्यान दिलाते हैं, बच्चों से समय समय पर कहानियां कविताएं लिखवाते हैं कि अपने मन से अपने कल्पना से लिखें, और उसको हम लोग पाठक मंच के हेड ऑफिस दिल्ली पहुंचाते हैं।
1: अच्छा।
0: बाय पोस्ट।
1: हाँ हाँ।
0: या बाय मेल।
1: अच्छा।
0: जो भी संभव होता है, और वहां से एक पत्रिका निकलती है, द्विमासिक पत्रिका, रीडर्स क्लब बुलेटिन यानी पाठक मंच बुलेटिन, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के रचनाएं उसमें शामिल हो, छपे और छपता भी है।
1: अच्छा।
0: एक बार की संजोग कि एक पत्रिका में हमारे यहाँ के बच्चों के 6 आर्टिकल एक साथ छपे थे।
1: अच्छा अच्छा। हाँ।
0: ये 2014 की बात है।
1: हाँ, हाँ। और अभी क्या स्थिति है बच्चों की?
0: बच्चे आते हैं, ड्राइंग सिखाया जाता है।
1: हाँ।
0: बच्चे आते हैं और अपने वैसा रुझान नहीं रह गया जो पहले था।
1: हाँ।
0: और हम जनरल नॉलेज का भी बच्चों को ज्ञान देते हैं, सामान्य ज्ञान का।
1: हाँ,
0: हाँ, क्या है नहीं है, समाज से जुड़े, इतिहास से जुड़े बातों का।
1: अच्छा।
0: बच्चों से चर्चाएं करते रहते हैं।
1: हाँ,
0: उसके मन बहलाव की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मोबाइल आके कुछ डिस्टर्ब किया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, लेकिन काम चल रहा है। दो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, एक दिसंबर में वो संध्या फेरी निकालते हैं।
1: अच्छा।
0: शिक्षा जागरूकता रैली।
1: अच्छा।
0: बच्चों को नगर का जहां तक हो सके भाग को घुमाते हैं।
1: हाँ।
0: ये दिसंबर का महीना ठंडे के मौसम में करते हैं।
1: अच्छा।
0: पब्लिक के सामने हम लोग बच्चों को लेके घूमते हैं। और दूसरी बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा।
1: अच्छा। हाँ।
0: ये माँ सरस्वती पूजा के दिन में बच्चों को बुलाकर साल भर में अच्छे कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कृत वगैरह करते हैं।
1: और आप लोग किन किन विषयों को लेकर के बच्चों को काम सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, जो भी?
0: वो
1: क्योंकि हर
0: क्रमबद्ध रूप से बांधे हुए हैं।
1: हाँ हाँ
0: हाँ।
1: अच्छा। जैसे
0: कभी कभी इतिहास को उठा लिए।
1: हाँ हाँ।
0: कभी धर्म संस्कृति को उठा लिए।
1: हाँ हाँ।
0: मैंने विषय बदल बदल कर।
1: अच्छा।
0: हाँ, कभी साहित्यकार को उठा लिए।
1: अच्छा।
0: अलग अलग विषय में उन्हें जानकारियां देते रहते हैं कि वो समाज को जाने, इतिहास को जाने। और बच्चे जो है ना सरल मन के होते हैं, उससे हम लोग

0: ये हम लोग सलाह देते थे बच्चों को, पर आज ये स्थिति हो गया है कि अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे कहानी का किताब पढ़े पर बच्चे मोबाइल देख रहे हैं।
1: अच्छा, मतलब कि उल्टा हो गया है ना?
0: उल्टा हो गया है
1: जी हाँ।
0: अभिभावक चाह रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी कॉमिक्स और किताब और कहानी किताब पढ़े, लेकिन बच्चे उसको छोड़ के मोबाइल की तरफ झुक रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: इसको संभालने के लिए बहुत विकट परिस्थिति आ गया है।
1: जी हाँ
0: हाँ, और जैसे मोबाइल ऐसा जीवन का अभिन्न अंग हो गया है कि हम छोड़ ही नहीं सकते उसे।
1: जी हाँ।
0: कहीं ना कहीं से पकड़ना ही पड़ेगा।
1: अब तो स्कूल में भी मतलब कि मोबाइल पे ही लोग पढ़ाई करते हैं।
0: जी जी,
1: मतलब जी। काफी आगे जाने के बाद ही वो इन सब चीजों में ध्यान लगाते हैं, लेकिन फिलहाल तो जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो मोबाइल में लगे रहेंगे तो उनकी उनका जो है आंख भी खराब हो सकता है।
0: मैम, एक बात और भी है।
1: जी हाँ।
0: कि बच्चों को एक क्लास से नौ क्लास तक
1: हाँ
0: कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दें,
1: हाँ,
0: पर जब मैट्रिक लिखी जा रही है
1: हाँ,
0: तो उसे ऑफलाइन कर दिया गया है।
1: जी हाँ।
0: पूर्वरत है पहले से, तो आप गंभीरता से सोचने की विषय है कि यदि हम साल भर माने एक क्लास से नौ क्लास तक कहें कि ऑनलाइन पढ़ो बेटा, और उस समय जाके मैट्रिक के समय पेन चलाओ, तो बच्चे कैसे चलाएंगे?
1: जी हाँ।
0: इस बात पर बहुत बड़ा गंभीर विषय है। शुरू से ऑनलाइन, इस पे क्या ध्यान देना होगा? कोरोना का समय जो हुआ सो हुआ।
1: अच्छा,
0: अब थोड़ा सा प्रोग्राम प्रैक्टिकल में आना भी जरूरी है।
1: हाँ हाँ जी हाँ। ज्यादातर देखिए, आपने बच्चों के साथ काफी गुजारा है
0: जी,
1: तो पहले जब आप बच्चों के साथ रहते थे उस समय उनकी रुचि क्या रहती थी, और अब जो बच्चे हैं उनकी रुचि क्या है? कुछ तो अंतर होगा।
0: जी, बहुत अंतर है।
1: जी हाँ।
0: उस समय ये सोशल नेटवर्क, इंटरनेट, ये सब नहीं था।
1: हाँ।
0: बच्चे ड्राइंग बनाते थे, चित्र बनाते थे, रस्सी से बच्चियां रस्सी से कूदती थी, रस्सी जंप, लड़के लोग क्रिकेट फुटबॉल सब तरफ से लगे, बैडमिंटन। अब धीरे धीरे सब कुछ खत्म होके मोबाइल में सीमित में आ गया है। मोबाइल में कैरम बोर्ड, लूडो, बैडमिंटन, क्रिकेट सब मोबाइल में ही खेल रहे हैं। ये स्थिति आ गया है। सारा गेम तो उसमें नजर आता है लगभग लगभग।
1: जी,
0: तो बच्चे बच्चे ड्राइंग पहले बनाते थे, अब उस पर उसकी कोई रुचि ही नहीं रहेगी। जहां देखो मोबाइल लेके बैठ जा रहे हैं और गेम खेल रहे हैं। जहां तक आधुनिकीकरण है, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति आ गया है।
1: जी हाँ।
0: बच्चों के लिए खास करके
1: जो अभी के जो बच्चे हैं, इस जमाने के बच्चे जो हैं, तो वैसे जमाने के हिसाब से अभी तो उनका मन ड्राइंग बनाने में नहीं लगता होगा।
0: जी नहीं।
1: तो उस जगह पर आप क्या करते हैं?
0: उन्हें कथा, उन्हें हमारे पास तो आते हैं तो बिना मोबाइल का ना।
1: हाँ।
0: हम तो मोबाइल से नहीं बुलाते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: हम उन्हें बैठाते हैं, समझाते हैं, सामाजिक बातों पर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। वो एक बॉक्स वाली माइक में लगाकर उनसे बातचीत करते हैं, यानी साउंड बॉक्स लेकर।
1: हाँ हाँ।
0: पोर्टेबल वाला आता है ना।
1: अच्छा, तो
0: उससे वो लोग बात वगैरह करवाते हैं इस तरह से। उनके जहां तक होगा मन भराव करते हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिकल रूप से सिखाते हैं। जो पहले जो जो तरीका था उसी तरीका का अनुरूप कुछ कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार का ज्ञान, नॉलेज। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का, हम विभिन्न धर्म के विषय में भी जानकारियां देते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, हमारे पास विष्णु भगवान का भी चर्चा होता है, बुद्ध का भी होता है, महावीर का, महावीर कहिए, यीशु मसीह कहिए, हजरत मोहम्मद साहब कहिए, या गुरु नानक कहिए, हम सबके विषय से जुड़े हुए हैं।
1: जी।
0: अब बच्चों को अवगत कराते हैं।
1: हाँ, बच्चों को ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि ये हमारा जो देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सबका सम्मान इज्जत करना बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: है कि नहीं? क्योंकि ये उनके दिमाग में जरूर डालना चाहिए कि जिस जगह से, मतलब कि जिस देश में अगर इस तरह का बवाल अगर होता है, तो ये बवाल नहीं होना चाहिए। धर्म को लेकर

0: ज्यादा हम बोल रहे हैं। धर्म को लेकर इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो बच्चे समझेंगे तो आगे जा करके एक अच्छे नेता भी बन सकते हैं।
1: जी
0: आप क्या कहना चाहते हैं इसमें?
1: देखिए मैम, सभी धर्म की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, चूंकि मैं ऐसा हूं ना, बच्चों को पढ़ाने के क्रम में मैंने बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब लगभग सबका अध्ययन किया,
0: जी
1: विष्णु पुराण। तो इससे ये पता चलता है कि सभी धर्मों के ऊपर एक ऐसा शक्ति है जो पूरे संसार को संभाले हुए है,
0: जी
1: जिससे पूरा संसार चल रही है। ऐसे ही हम हमारे हर धर्मशास्त्र में अलग अलग तरीके से समझा जाता है,
0: जी
1: लेकिन
0: हाँ
1: वास्तविकता यह है कि कोई एक परम शक्ति है जो पूरे संसार को संभाले हुए है।
0: जी
1: इसका अंतर्ज्ञान हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं।
0: जी
1: कुछ तो है जो पूरे पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को बैलेंस बना के रखा है। इसमें हम लोग अलग अलग धर्म मत में अलग अलग समझते हैं।
0: जी हाँ
1: जैसे आप धर्म की बात कर रहे हैं, बच्चों को समझाने की बात कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि पहला पुरुष और महिला जो थे वो मनु और शतरूपा थे।
0: अच्छा
1: इन्हें ब्रह्मा ने अपने शरीर को भाग करके बनाया था। तो यहां से मनु, ये जो मनु से मनुष्य शब्द आया है।
0: हाँ
1: और बाइबल और कुरान में आदम और हव्वा का उल्लेख आता है,
0: जी हाँ
1: तो आदम से आदमी शब्द आया।
0: जी हाँ
1: ये सब उसी हिसाब से अनुरूप बनता चला आया है। अब हमने गौर से जब हम अपना धर्म पढ़ते हैं तो अलग बात है मैडम,
0: हाँ
1: लेकिन लेकिन जब हम सब धर्म को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि शक्ति एक ही है
0: जी हाँ
1: जो सभी को संचालित कर रहे हैं।
0: जी
1: और
0: ईश्वर
1: वास्तव
0: एक
1: जी
0: है, ईश्वर एक है
1: ईश्वर एक है।
0: जी हाँ।
1: जी
0: तो बच्चे क्या समझते हैं ईश्वर एक है?
1: बच्चे को ही समझाना पड़ता है, वो भी जब समझाते तो भी मानने को तैयार है कि वास्तव में कोई एक शक्ति है जो जो निराकार है,
0: हाँ जी
1: उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम मान सकते हैं, उसे श्रद्धा कर सकते हैं, हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, हम यीशु मसीह को प्रार्थना कर सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन कोई तो है अज्ञात शक्ति जो पूरे संसार को चला रहा है,
0: जी
1: उस पर विश्वास रखना चाहिए।
0: जी अच्छा, ये तो ही धर्म की बातें।
1: हाँ
0: अब सेवा धर्म, सेवा भी एक धर्म
1: जी
0: है ना? जो
1: जी
0: सेवा भाव, अपने आस पड़ोस से प्रेम करो, अगर कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, जो
1: जी
0: निसहाय है उस
1: जी
0: विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे क्या कर सकेंगे वैसा?
1: बच्चे अभी छोटे हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इस पे अभिभावक को भी ध्यान देना आवश्यक है। अब
0: हाँ
1: मान के चलिए कि मेरा बेटा समाज सेवा करने जा रहा है,
0: जी हाँ
1: मुझे प्रोत्साहित करना होगा कि बेटा ये काम करो, इसके लिए आगे बढ़िए, इसको सीखिए बाबू, हाँ लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हर अभिभावक इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं।
0: जी
1: एक अगर कहते हैं तो छोटे शब्दों में समझाया जा सकता है, जैसे कि हर इंसान, ये एक कटु सत्य है
0: जी हाँ
1: कि हर इंसान आज के डेट में चाहता है कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति हो, सुभाष चंद्र जैसे व्यक्ति हो, भगत सिंह जैसे व्यक्ति हो, इन्हें देश और समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। पर कटु सत्य यह है कि वो मेरे घर से ना हो,
0: जी हाँ
1: ये बहुत बड़ी बात है।
0: अच्छा
1: अभिभावक नहीं चाहते कि मेरा बेटा वो हो, लेकिन समाज में ऐसा व्यक्ति हो,
0: जी
1: ये हो
0: हाँ
1: गया। अब इसमें क्या है ना, गार्जियन के मन में, अभिभावक के मन में भावना होनी चाहिए कि हम बच्चों को स्वतंत्र करें कि समाज में आगे बढ़ें, सीखें,
0: जी हाँ
1: स्टेज में, प्रोग्राम में जाएं।
0: जी हाँ
1: और इस बात को बढ़ाते हुए ये कहना है कि जैसे हमारी आजादी के समय जो देश की स्थिति थी, तो वो अब नहीं है। इसका कारण है
0: जी
1: कि
0: हाँ
1: उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम पूरे देश में छिड़ी हुई थी,
0: हाँ
1: तो हमने अभी आपसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन महान जो हमारे महापुरुष हैं, इनके नाम लिए। क्यों
0: हाँ
1: लिए? इसका विषय यह है कि इन्होंने अपना खून पसीना बहाकर हमारा भारत को स्वतंत्र किया,
0: जी हाँ
1: हम आजादी के सांस लिए। उस समय के जो लोगों में जो भावनाएं थी देश के प्रति, तो वो अब नहीं रहा।

0: इसलिए नहीं रहा कि उस समय था कि खून खून पसीना बहाकर हमें आजादी मिली थी, पर आज के जो वर्तमान पीढ़ी है इसे जो है ना, आज के बच्चों को या आज के जो पीढ़ी है जिन्होंने आजादी के समय जन्म नहीं लिया था, उसके बाद जन्म लिया है, तो इनके अंदर क्या है ना, जैसे एक कहना कि एक अपनी कमाई हुई संपत्ति और एक अभिभावक द्वारा दी गई संपत्ति, ये दोनों में बहुत अंतर हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: जो अपने खून पसीना से कमाए वो हो गई अपनी हमारी मेहनत, उसमें दिखता है, और जो हमें अपने पिछले पीढ़ी से मिलता है वो हमें फ्री में मिलता है।
1: जी हाँ।
0: मुफ्त में, तो मुफ्त में मिलने के कारण उसका वो जो देश का जो सम्मान था वो समाप्त हो गया है। अगर इसको वापस लाना है तो इसका एक तरीका है कि बच्चों को सोते समय रात में अभिभावक कहे कि मोबाइल बंद करके साइड कर दे, और उसे देश की आजादी से जुड़े हुए और धर्म परायणता से जुड़े हुए कि ऐसे इस तरह से हमें आजादी मिली, इस तरह से हम आगे बढ़े, वो पुराना जो ज्ञान वो जो है किताब में और मोबाइल में से एकत्र करके बच्चों को समझाया जाए, बच्चों के कानों में भरा जाए कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा संघर्ष हुआ था, उन सभी आजादी के गाथाओं को बच्चों के कान में आनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: तब जाके इनके अंदर कुछ भावनाएं जगेगी, क्योंकि मुफ्त में मिली संपत्ति का कोई मोल नहीं होता।
1: हाँ जी। और इसके अलावा बच्चों को और क्या क्या बताते हैं?
0: बताते हैं बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझाते हैं, उसे पढ़ने के लिए उसे अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए तरीका सिखाते हैं, निशुल्क परीक्षा में अधिक से अधिक अंक कैसे लाएं उसकी तरीका बताते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: जैसे कि उदाहरण के तौर पे गणित पढ़ते समय, गणित की किताब बच्चे निकालते हैं तो गणित से पहले उदाहरण दिया हुआ रहता है, एग्जाम्पल।
1: अच्छा।
0: विषय से पहले एग्जाम्पल होता है, उसके बाद अध्याय शुरू होता है, तो पहले बच्चे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से पढ़ के समझ ले।
1: हाँ हाँ।
0: तो वो आगे की प्रश्न जो गणित है वो हल हो जाएंगे।
1: हाँ हाँ।
0: एक, और लेकिन अन्य विषयों में जो गणित के अतिरिक्त जो विषय है उसमें दूसरे तरीका अपनाए।
1: अच्छा।
0: उसमें पहले प्रश्नावली को पढ़ लें, पहले प्रश्न को पढ़ लें अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद वो विषय को पढ़ें, चैप्टर को पढ़ें।
1: अच्छा।
0: इससे क्या होगा, सारा प्रश्न जो है पहले पहले दिमाग में डाल लेना है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है, तब जब हम चैप्टर को निकाल के पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगी ये लाइन यहाँ से था, ये लाइन यहाँ से था, ये लाइन यहाँ से था। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छे नंबर लाने के लिए होता है, बच्चे पूछे टीचर से, टीचर को ये टोकना नहीं पड़े कि ये क्या होता है, बच्चों को वो आगे बढ़ के पूछना पड़ेगा मैम ये क्या होता है, इसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा। इस तरह से गणित के लिए हर विषय के लिए हमारी कोशिश रहती है कि वो गुरु सिखाएं, वो ज्ञान सिखाएं कि बच्चे अधिक से अधिक मार्क लाएं।
1: जी
0: हाँ। हमारे यहाँ कुछ बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, उन्हें सिखाए थे, आज भी याद करते हैं कि सर हम बहुत कमजोर थे लेकिन आपके गाइड से बहुत अच्छे हो गए।
1: जी।
0: ये बात भी ध्यान रख में रखा गया है।
1: जी। तो आपका मंच जो है एक स्कूल की तरह है?
0: नहीं, केवल रविवार।
1: अच्छा।
0: केवल रविवार।
1: अच्छा।
0: स्कूल की तरह नहीं है।
1: अच्छा।
0: हमारे पास विभिन्न स्कूल के बच्चे संपर्क में रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: आजकल तो और सुविधा हम कर दिए हैं, कुछ बच्चे जो नहीं आ सकते हैं हमारे पास, और हम अगर ज्यादा प्रतिभावान है तो समय निकाल निकाल कर उनके घर में जाके भी उन्हें कुछ कुछ सिखाते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन ये जरूरी नहीं कि रोज आए, हम अपना टाइम देख के उनको फोन करते हैं कि आते हैं कुछ कुछ सिखा देंगे। इस तरह से भी हमने बहुत सारे बच्चों को रखा है, एक घर में चार पांच छह बच्चे एक बार बैठाते हैं, कुछ कुछ उन्हें भी सिखाते हैं।
1: अच्छा।
0: वो टाइम फिक्स नहीं है।
1: हाँ।
0: वो हम फोन में बता देते हैं कि हम इतने दिन में आएंगे, इतना टाइम में आएंगे, आप लोग बना के रखिए।
1: अच्छा। नीति शिक्षा भी एक विषय है जो कि बहुत अच्छा विषय है। वो
0: अच्छा विषय है और आवश्यक विषय है।
1: जी
0: जी।
1: तो उसमें आप लोग क्या क्या सिखाते हैं? नीति शिक्षा तो हम लोग पहले, हम लोग के जमाने में लोग सबसे पहला पढ़ाई की शुरुआत होती थी नीति शिक्षा पर।
0: जी
1: हाँ। उसमें बहुत सारी चीजें, भजन वगैरह भी सिखाया जाता था
0: नैतिक शिक्षा में।

0: विशेष करके हम पंचतंत्र का उल्लेख करते हैं उसके विषय में बताते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, वो बहुत बड़ा नीति शिक्षा था।
1: हाँ
0: हाँ, उसी कहानियों को सुनाते हैं, समझाते हैं और कैसे कैसे जीवन में नीति सीखना है, इसके लिए पंचतंत्र बहुत अच्छी बुक है
1: जी। हाँ,
0: बच्चों के लिए
1: जी। और माँ बाप का आदर हम कैसे करें, टीचर का सम्मान हम कैसे करें।
0: माँ बाप का आदर माँ बाप करने सिखाए
1: जी।
0: बेटे रोज माता पिता को प्रणाम, कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं, उन्हें प्रणाम करने में शर्म लगता है।
1: हाँ,
0: लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो सुधार होता है। बच्चों को ये सिखाना होगा कि देखिए, अगर आप बड़े को, माने बच्चों के नहीं, किसी को भी ये समझाया जा सकता है कि यदि हम कि अपने से उम्र से जो बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है। वो उसकी जो ज्ञान है ना,
1: हाँ,
0: वो कुछ तरंग बनकर हमारे शरीर में आ जाते हैं।
1: जी, हाँ,
0: ये सीखने के लिए
1: जी,
0: इसके लिए थोड़ा सा बड़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा।
1: हाँ, हाँ,
0: अगर माता पिता के चरण छूने की बात है, तो जैसे हम नौकरी में जा रहे हैं या डेली, खास करके पुरुष वर्ग, आजकल के महिलाओं भी घर से निकल के हमें ड्यूटी पे जाना है।
1: हाँ, हाँ, जी,
0: तो बच्चों को सिखाने का यह तरीका होगा कि बच्चों के सामने आप अपने, हमारे जो माता पिता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम उनको प्रणाम करके जाएं।
1: जी हाँ,
0: बच्चे देखे देखे हमें करेंगे।
1: जी हाँ,
0: हमें करना पड़ेगा पहले।
1: हाँ, उनके सामने ने दिखाना पड़ेगा कि इस
0: उनके
1: तरह
0: सामने दिखाना पड़ेगा, मैं अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके जा रहा हूँ।
1: जी हाँ,
0: उसके दिमाग में आएगा अरे पापा दादी को प्रणाम करके जाते हैं, तो हम भी पापा को प्रणाम करके जाए, हम भी दादी को प्रणाम करके जाए। वो संस्कार हमें अपने आप में रखना होगा पहले।
1: जी हाँ,
0: बहुत सारे घरों में ऐसा है भी।
1: हाँ,
0: आपको बता दूं कि आज के डेट में खास करके बच्चियां, लड़की बच्ची,
1: हाँ,
0: जो आज की युवा पीढ़ी है, बचपन में आई है, मुझे ये देखकर मैं भावुक हो जाता हूँ कि बीच बाजार में रोक के पैर छूती है।
1: अच्छा,
0: यंग लड़कियां।
1: हाँ हाँ जी
0: सर, जबरदस्ती रोकती है, रोक के प्रणाम करती है। ये चीज है। लेकिन मैं देख, जहां तक आप नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं,
1: हाँ हाँ,
0: मुझे लगता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में नैतिकता ज्यादा है
1: जी।
0: पता नहीं।
1: दोनों की जो मानसिकता है अलग अलग होती है।
0: हाँ,
1: है ना, इसीलिए
0: बच्चियों में, लड़की बच्ची में नैतिकता ज्यादा है।
1: हाँ जी। तो चिन्मय जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही बच्चों के विषय में, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका मंच जो है बच्चों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाएगा। और अपना अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: बच्चे मन के सच्चे, ये था भेंटवार्ता का विषय। जानकारी दे रहे थे चिन्मय दत्ता।

अभी आपने सुना फिल्म रोजा का ये गीत मिनमिनी के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म खामोशी से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की।

अभी आपने सुना फिल्म राम जानी का ये गीत, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: इस संदेश के बाद आइए अब सुनते हैं फिल्म कुदरत का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म कल हो ना हो के इस गीत से, अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म तेरे नाम का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है आशिकी 2 से अरिजीत सिंह के स्वर में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाहे वासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 और 12 सेकेंड हो चुके हैं। आपको इंतजार होगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। जोहार रांची कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आपको हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद भूले बिसरे की। अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है छैला बाबू, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: श्रोताओं, गुलदस्ता कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ छवि, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद भूले बिसर गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म 20 साल बाद का ये नगमा हेमंत कुमार की आवाज में।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लो।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म वंदनी का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत है एच डी बर्मन का।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स

0: में बना, वो भी सन 1700 में।
1: किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नैन संदेश को चनाब इलामियन बेपटा जब अगर वो आयुमिया चाह सकिया को सारो उतो सारो रिया चास बास बिथाय रहे जब अगर तना किंग सुनील बुढ़ी होले अंडो आयलो ते जब अगर गुस्से लेकर ते में अलिंग अलिंग डोबरो बुढ़ी होले इला मार वो आयुमिया सारो चास रिया बिसाय रहे आकाशवाणी चायबासा कार्यक्रम किसान बाणी परिवार पाते अलिंग डोबरो बुड़ी उले तक अबेना हतु बारकुंडिया रेलिंग सेटर बिटायना चिरगेल अटकार होबायना छि अबेन मेंडो एसो चास बास रे एसो लगातिंग ओंडो कुरमुटु केन हागतनाबेन एसो कम उमारे ताबेन चास बास रेबेन अचु केने एन दो विषय ओडों रे जपगर आयरते अबेना उपरम को जगर ताबेन
4: या अलिंग पते मारबेन डोबर साहब तकिन जोहार
3: या जोहार गे अबेना
4: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱵᱩᱲᱤ ᱩᱞᱤ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱨᱠᱩᱱᱰᱤᱭᱟᱹ ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱵᱟᱨᱠᱩᱱᱰᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱥᱩᱨᱥᱟ ᱥᱤᱝ ᱵᱩᱡᱽ ᱡᱟᱭᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱯᱷᱳᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯ আচ্ছা
5: সুনীল তিকিং আবেন এনাবেন জাগার কেডা সারু রিয়া সামা সি নালি রেগে এম তিয়া লেকা দো এনা দো চিমিন তোপড়া সানিং রে সারু দো আরাপান দে স্পুরে পতাওয়া এন দো মিমি মুক সানিং রে চি মিমি বিতে নো রে
4: মিমি বিতে দে সো জাপাজ পার না ও
5: ইয়া ইয়া
4: ইনকার দো মিমু কে রোটি গে
5: ইয়া ইয়া
4: মিমু কে রোটি গে চিনা চিনা দো স্পুরে ই জলডু প্রনাল করকে আচ্ছা
5: ইয়া ইয়া
4: নামেন্তে
5: আচ্ছা এনতে না তো চিলিকা সময়রে

मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही

जा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चासाको ने लेखा अबुए चास अखड़े किली मिली संदेश को एते सिया अंडो चास बास को एते सिया विषय रे सिया को बो नामेतना नेलेकन जगर को आयुम केते नेलेकन संदेश को आयुम केते जुड़ूर भो बिरिडो अतिया दोरकरा हुशियारा अतिया बोदोरकरा अंडो ओ सिया अतिया बोदोरकरा अब निताते एसो किले मिली सिया सिविल जगर को बो नितरतना निताते जगर को अपयुम केनेते एसो पूरे हो को बुगिन बुगिन चास बास को रिके केडे अंडो एन लेखा के को पैटी तने ना दो अबु ए बाबा हर समय बिटायना निमितें चास गया को अबु ए मुनु एलेकाते नाहिल को ओ भाई अबु ए जोको ना पैटी तिया को भाई तियर केते जोकन ओ कुंडी को चितन कुंडी को ना तो जिये हाइडी आना इनकन कुंडी को अबु चास बास के ऐसी पड़ा केते दुम्बु को कारोवाकन रे जोको ये गितिल नो गुड़ा को चेर नो गुड़ा को दो एना को बो सी केते अबु बो सी बो सरका गमाय रियो ए चिकाय गमाय रियो ना पैटी समय के इनकन अबिटा कना जाओगे सितारे अबो सियो पैटरियो चे अबो आणी रपुड़ के अंदो तिरिंग पैटरियो चे ना दाँ ऐसे तिया ना नैन समय रगे कुंडे क्यारी को भाई तियारी अबो तियरी ना अंडो समय रगे अबो चास बास को वो पुयुर तिया अबो दुरकरा निमिर दो चास हो गया को वो चिर के लतन गया अबो ए बीड़ा भाई दिको इदंग रे बो अचाय तृतीय मोट को रे बो हेयर हेयर ओल तिया गे मंदो निमिर दो एना को ना 25 मई पाते बो हेरेर दो रो हाइडियन रदो इना को बो हेर दिए मैं दो का हाइड कन और दो इना को रिया कबो हेर ओल दिए इनकन उड़ी गुड़ी रदो चिना अबू चिकायते दोर करा चास गया को अबू इना को रिया लगे दो बाबा को बो पढ़ाएते हुआ हुआ पड़ा बाबा तीर तो सा अब सही समय रगे इन कुंडे को रे लसोट के तबो रुआ बिड़े का अंडो समय रगे पहट को पूरे का तीसिंगे चर्च चास अकड़ा रिया कामे को रेट को निंता रगे होकन तनची जवाब तना आयुम संगे के सनम चास गया को अलिंग डबर बुड़ल तिकिंग पैते सनाम को अंडो मिसे हंडोर सिविल जोहार।

0: श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों सुलहनीय मामलों का विशेष बेंचों का गठन कर निष्पादन

0: किया गया और करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली हुई। इस मौके पर कई लोगों को लंबे समय बाद न्याय मिला। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त और आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी कॉलेजों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार से सभी फार्मेसी कॉलेज की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संगठित अपराध पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि आमतौर पर पुलिस अपराधियों का पर्दाफाश करती है, लेकिन राज्य में गैंगस्टर ही पुलिस के कथित काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का मीडिया में वायरल हो रहा एक ताजा वीडियो न केवल पुलिस को चुनौती दे रहा है बल्कि वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल का मूल्यांकन भी कर रहा है। लोहरदगा एसपी कोठी के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। दुर्घटना के कारण कुछ देर तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। बाद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया गया और आवागमन शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम बंगला में सात रंग।

0: शेखर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: শ্রোতা বন্ধুরা, আজকে আর বিশেষ সময় নেই, তাই আজকের মতো আমাদের এই বঙ্গভাষার অনুষ্ঠান সাতরং এখানেই সমাপ্ত করতে চলেছি। আমাকে অনুষ্ঠান থেকে বিদায় দিন, নমস্কার।

कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सब का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण बातों से करते हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यानी पश्चिम सिंहभूम, ये जो है इसमें सरंडावन जो है और पोड़ाहाट, इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो मलेरिया से ग्रसित हैं। तो क्यों ना सरकार के द्वारा तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है और इसकी रोकथाम के लिए, लेकिन हमें भी जरा सचेत रहना होगा। इसके लिए श्रोताओं, मलेरिया से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय जो है वो मच्छरों के प्रजनन को

रोकना और उनके काटने से बचना है। इसके लिए घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, सोते समय कीटनाशक या उपचारित मच्छरदानी का उपयोग करें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। और शाम को खासकर अगर हम देखें तो शाम के समय घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें और मच्छरों को दूर रखने वाली क्रीम या फिर कॉइल का उपयोग करें। श्रोताओं, अगर हम मुख्य रूप से देखें कि इससे बचाव के प्रमुख उपाय जो है वो है, जैसे मैंने कहा कि पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए कूलर, पुराने टायर, बाल्टी और गमलों में पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन होना संभावित हो जाता है। इसके लिए इन सभी जगहों को हमेशा साफ रखें, जैसे मैंने कहा कि मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही शरीर को ढक कर रखें और मच्छर भगाने वाले उपाय आप जरूर करें। घर की अगर सुरक्षा की हम बातें करें तो घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं ताकि मच्छर अंदर ना सके। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, जो स्थानीय उपाय हैं, रुके हुए पानी पर मिट्टी का तेल या जला हुआ मोबिल ऑयल डालें ताकि मच्छरों के लार्वा मर जाएं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं श्रोताओं की, यदि आपको तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द या उल्टी जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे पता चल सके कि आप मलेरिया से ग्रसित हैं या नहीं है। तो अगर इस तरह कुछ सावधानियों को हम अपनाएं तो मलेरिया के संक्रमण से हम बच सकते हैं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: श्रोताओं, कुछ और हम जानकारी लें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बातें करेंगे नवजात शिशुओं पर। जी हाँ, नवजात शिशु में स्तनपान क्यों जरूरी है, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मीना कालुंडिया और उनसे बातचीत कर रहे हैं अविनय अवनीश सिन्हा।
5: नमस्कार श्रोताओं, माँ बच्चे को सिर्फ रंग रूप या संस्कार ही नहीं देती बल्कि गर्भ के समय से ही सेहत का तोहफा भी देती हैं। माँ से मिलती है सेहतमंद जिंदगानी। नवजात शिशुओं में स्तनपान कितना जरूरी, ये जानने के लिए आज हम मिल रहे हैं सदर अस्पताल चाईबासा के चिकित्सक डॉक्टर मीना कालुंडिया जी से। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
6: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि नवजात शिशुओं में स्तनपान क्या है।
6: नमस्ते। माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से आने वाला प्राकृतिक दूध पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहते हैं
5: जी।
6: या सभी स्तनपायियों में आम क्रिया होती है। स्तनपान शिशु के लिए संरक्षण तथा संवर्धन बंधन का भी काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं होती है। माँ के शिशु से यह शक्ति शिशु

0: को प्राप्त होती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होता है जो बच्चे के आंत में लौह तत्व को बांध देता है, और लौह तत्व के अभाव में शिशु के आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। माँ के दूध से आए साधारण जीवाणु बच्चे के आंत में पनपते हैं और रोगाणुओं से प्रतिस्पर्धा कर उन्हें पनपने नहीं देते। माँ के दूध में रोगाणु नामक तत्व होते हैं। वातावरण में माँ की आंत में पहुँचे हुए रोगाणु आंत में स्थित विशेष भाग के संपर्क में आते हैं जो उन रोगाणु विशेष के खिलाफ प्रतिरोधात्मक तत्व बनाते हैं। ये तत्व ए विशेष नलिका थोरेसिस डक्ट से सीधे माँ के स्तन तक पहुँचते हैं और दूध से बच्चे के पेट में इस तरह बच्चा माँ का दूध पीकर सदा स्वस्थ रहता है।
1: जी, ये आंकड़े कुछ बताते हैं इसके बारे में।
0: अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर 5 साल की उम्र तक के बच्चों में स्तनपान नहीं करवाने से लाखों मौत बच्चों की होने की उम्मीद रहती है ना। इसलिए दोनों विकासशील तथा विकसित देशों में स्तनपान से श्वसन तंत्र में संक्रमण तथा दस्त के जोखिम को कमी के कारण स्तनपान के द्वारा स्तनपान के जोखिम को कमी किया जा सकता है
1: जी,
0: है ना। इसलिए स्तनपान करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही जिन बच्चों में बचपन से पर्याप्त रूप से माँ का दूध पीने को नहीं मिलता है उनमें बचपन में शुरू होने वाली डायबिटीज़ की बीमारी अधिक होती है। उनकी अपेक्षाकृत बुद्धि विकसित कम होती है। अगर बच्चा समय पूर्व जन्म या प्री मैच्योर हो तो उसे बड़ी आंत का घातक रोग नेकोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस नामक हो सकता है। अगर गाय का दूध पीतल के बर्तन में उबाल कर दिया गया हो तो उसे लीवर का रोग इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस हो सकता है। इसलिए 6 से 8 महीने तक के बच्चों के लिए माँ का दूध श्रेष्ठ ही नहीं जीवन रक्षक भी होता है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि माँ का दूध ही नवजात बच्चों को पिलाना चाहिए। साथ ही ये बताइए मैडम कि स्तनपान के लाभ क्या हैं।
0: माँ का दूध केवल पोषण ही नहीं जीवन की धारा है। इससे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिशु को पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान पर ही निर्भर रहना चाहिए। यह शिशु के जीवन के लिए ज़रूरी है क्योंकि माँ का दूध सुपच्य तुरंत पचने वाला होता है, है ना। इससे पेट की गड़बड़ियाँ आशंका नहीं होती है। माँ का दूध शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। स्तनपान से दमा और कान की बीमारी पर नियंत्रण कायम होता है क्योंकि माँ का दूध शिशु की नाक और गले में प्रतिरोधी त्वचा बना देता है। कुछ शिशु को गाय के दूध से एलर्जी हो सकती है। इससे विपरीत माँ का दूध 100% सुरक्षित है। शोध से प्रमाणित होता है कि स्तनपान करने वाले बच्चे बाद में मोटे नहीं होते हैं, या शायद इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें शुरू से ही ज़रूरत से अधिक खाने की आदत नहीं पड़ती है। स्तनपान से जीवन के बाद के चरणों में

0: रक्त कैंसर, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप का खतरा कम हो जाता है। स्तनपान से शिशु की बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। इसका कारण यह है कि स्तनपान कराने वाली माँ और उसके शिशु के बीच भावनात्मक रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा माँ के दूध में कई प्रकार के प्राकृतिक रसायन भी मौजूद होते हैं जो बच्चे को उसके विकास में काफ़ी मदद करता है।
1: यहाँ एक बात हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा कि बहुत सारी माएँ होती हैं जो अपने नवजात बच्चों को अपना स्तनपान नहीं करवाना चाहती हैं, उनके बारे में बताइए, क्या उससे उन्हें भी कुछ फ़ायदा है?
0: नई माताओं द्वारा स्तनपान कराने से उन्हें गर्भ अवस्था के बाद होने वाली शिकायतों से मुक्ति मिल जाती है। इससे तनाव कम होता है तथा प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। माँ के लिए बाद में होने वाली हृदय रोग तथा रूमेटिक गठिया, ये सब बीमारी का खतरा, स्तनपान करवाने से इन सब बीमारियों के ना होने का खतरा कम हो जाता है
1: जी।
0: ना, स्तनपान कराने वाली माताओं को स्तन या गर्भाशय के कैंसर का खतरा भी न्यूनतम उसमें कम देखा गया है
1: ना।
0: स्तनपान एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है
1: जी।
0: इसमें जो माताएं गर्भ स्तनपान कराती हैं उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता थोड़ा, गर्भ धारण काफ़ी दिनों के बाद होने का उम्मीद रहता है, है ना। स्तनपान सुविधाजनक मुक्त और सबसे बढ़कर माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत करने का सुलभ साधन है। माँ के साथ शारीरिक रूप से जुटे होने का एहसास शिशुओं को आरामदायक माहौल देता है।
1: अच्छा, ये बताइए कि नवजात शिशु को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए?
0: शिशु जन्म के फौरन बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जन्म के तत्काल बाद नवजात शिशु को उसके शरीर को कोमलता से सुखाने के बाद उसकी ही की गोद में देना चाहिए। माँ उसे अपने स्तन के पास ले जाए ताकि त्वचा के संपर्क हो सके। इससे दूध का बहाव तेज होता है और शिशु को गर्मी मिलती है। इससे माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध विकसित होता है। शिशु पहले 30 या 60 मिनट के दौरान सबसे अधिक सक्रिय रहता है। उस समय उसके चूसने की शक्ति सबसे अधिक रहती है। जल्दी शुरू करने से स्तनपान की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। स्तन से निकलने वाले पीले रंग का द्रव, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, शिशु को संक्रमण से बचाने तथा उसकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कराने की सबसे अच्छा उपाय है या एक टीका की तरह है। स्तनपान तत्काल शुरू करने से स्तनों में सूजन या प्रसव के बाद जो रक्तस्राव की शिकायत प्राय नहीं देखा गया है।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी महिलाओं को शल्य क्रिया से गुजरना पड़ता है, शल्य चिकित्सा से शिशु का जन्म होता है, तो ऐसी माताएं क्या स्तनपान करा सकती हैं?
0: शल्य क्रिया के 4 घंटे बाद या एनेस्थेसिया के प्रभाव से बाहर आने के बाद आप स्तनपान करा सकती हैं। स्तनपान कराने के लिए आप अपने शरीर को एक करवट में झुका सकती हैं या फिर अपने शिशु को अपने पेट पर लिटाकर स्तनपान करा सकती हैं। सिजेरियन विधि से शिशु की

0: किरण विधि से शिशु को जन्म देने वाली माताएं पहले कुछ दिन तक नर्स की मदद से अपने शिशु को सफलतापूर्वक स्तन करा सकती हैं।
1: कब तक स्तनपान करवाना चाहिए?
0: साधारणता कम से कम 6 महीने तक शिशु को स्तनपान कराना चाहिए और उसके बाद 2 साल या उसके बाद तक भी स्तनपान कराया जा सकता है। माता के बीमार होने पर शिशु को स्तनपान कराना जरूरी होता है। आमतौर पर साधारण बीमारियों से स्तनपान कराने वाली शिशु को काई नुकसान नहीं पहुंचता, यहां तक कि टाइफाइड, मलेरिया, यक्ष्मा, पीलिया या कुष्ठ रोग में भी स्तनपान पर रोक लगाने की सलाह नहीं दी जाती है।
1: कितने कितने समय पर नवजात को स्तनपान करवाना चाहिए?
0: एक नवजात का बहुत छोटा सा पेट, छोटे से पेट की क्षमता है। ये 1 दिन की उम्र में या 5 से 7 मिलीलीटर 1 दिन की उम्र में या 5 से 7 मिलीलीटर तक के आकार का होता है, है ना? दिन के समय में दोनों स्तनों से कम 10 से 15 मिनट तक हर 2 या 3 घंटे के बाद कराना चाहिए।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को नवजात शिशुओं में स्तनपान के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।

0: ᱟᱞᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱᱢᱟ ᱥᱮ ᱤᱧ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱨᱟᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ, ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱯᱟᱥ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱟᱨᱮ, ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ, ᱟᱞᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱵᱚᱨᱱᱟ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱨᱟᱭ ᱠᱚ ᱜᱟᱶ ᱵᱟᱨᱜᱮᱨᱟ ᱟᱲᱠᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱝᱜᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱛᱮ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱠᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱦᱮ ᱞᱚᱜ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱦᱮᱱᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱟᱦᱮ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱥᱩᱱᱮ ᱯᱟᱨᱞᱤ ᱚᱦᱮ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱟᱢᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱩᱢᱤᱠ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱚᱭ ᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨ
2: ᱱᱟᱢ ᱦᱮ ᱨᱟᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱜᱟᱶ ᱵᱟᱨᱮ ᱦᱟᱛᱚ ᱛᱚ ᱜᱷᱚᱨ ᱟᱭ ᱢᱮ ᱟᱢᱨᱮ ᱜᱷᱚᱨᱮ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱫᱩᱠ ᱠᱮ ᱵᱟᱛ ᱦᱚᱭ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱛ ᱦᱚᱭ ᱡᱟ ᱦᱮ
3: ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱢᱥᱚᱭ ᱟᱹᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟᱢᱥᱚᱭ ᱵᱷᱩᱨᱩᱯᱟ ᱥᱮᱱᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱚ ᱫᱩᱠᱩᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹ ᱡᱟᱯᱟ ᱢᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱣᱟ ᱵᱮᱴᱟᱱ ᱠᱟ
4: ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱩᱢᱵᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱜᱩᱢᱨᱮ ᱜᱚᱲᱟ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱦᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱚᱢᱨᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱩᱲᱚ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱠᱤᱛᱚᱢᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱤᱱᱤᱢᱤᱱ ᱩᱲᱤ ᱩᱲᱤ ᱱᱟ ᱵᱟᱜᱮ ᱟᱛᱚᱜ ᱠᱤᱧ ᱫᱩᱱᱟ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱛᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱮᱢᱤ ᱞᱟᱲᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱩᱨᱩᱨᱮᱢ ᱜᱩᱭᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱮᱞ ᱢᱤᱭᱟ
5: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱩᱨᱮᱱ ᱯᱮᱛᱮ ᱟᱯᱤᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱵᱩᱜᱤᱢ ᱦᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜᱼᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱩᱨᱮᱱ ᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞ ᱠᱟᱱᱟ
6: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो इसके साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ

0: मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा, करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा धनबाद में गैंगवॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश, एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों सुलहनीय मामलों का विशेष बेंचों का गठन कर निष्पादन किया गया और करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली हुई। रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले, ताकि न्यायालय पर लोगों का भरोसा बना रहे।
1: इन्वेस्टिगेशन तो बहुत मैटर करता है ना, किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन सही होगा तो फिर जो कोर्ट में कन्विक्शन रेट अगर बढ़ेगा तो लोगों में डर का माहौल होगा कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं होता, एक्विटल होता है, तो जो सही में जो क्राइम किया उसका तो उत्साह बढ़ेगा, चलो करने से कुछ नहीं होता है, फिर करो, रिपीट करो, तो जो डेटरेंस है वो खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का भी इम्पोर्टेंट है।
0: नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
2: बैठक हुई जिसमें शहर के कचरा प्रबंधन से लेके परिवहन व्यवस्था से लेकर कार्यकलाप को और बेहतर करने की दिशा में तमाम नागरिकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और मुझको लगता है कि इस बैठक का आउटकम गिरिडीह शहर को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त और आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी कॉलेज को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को सभी फार्मेसी कॉलेजों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर अंसारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जाँच के लिए विशेष टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि सभी तथ्यों की गंभीरता से पड़ताल की जा सके। उन्होंने कहा है कि जाँच के दौरान लापरवाही, नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी संगठन में नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के स्तर पर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, उसे वे उजागर करने का काम कर रहे हैं। श्री किशोर ने कहा कि पार्टी को ज्वलंत मुद्दों और चुनावी वायदे को लेकर मुखर होना होगा।
3: नाराजगी का कोई मामला नहीं है, पार्टी के असर पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा, लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर अगर पार्टी चुप बैठी है तो फिर किस बात की पार्टी। जो आपने वादे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि साथ वादे साथ इरादे, किसी एक पर भी आप मुखर नहीं हो पाए।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल वीडियो को लेकर राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि गैंगवॉर जैसी स्थिति बनी हुई है और आम लोगों में भय का माहौल है। श्री मरांडी ने कहा कि संवेदनशील जिलों में कथित रूप से करोड़ों रुपए लेकर पोस्टिंग किए जाने की चर्चाएं कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति जारी रही तो राज्य में कानून व्यवस्था और बदतर हो सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in

0: in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ACB ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने 18 जून को मामले की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र से ईसरी बाजार में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि कल हुई इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग। आदिवासियों की जमीन लूट समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री गीताश्री उराव ने कहा कि आदिवासियों को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से विभिन्न संस्थाओं में आदिवासी धर्म कॉलम लागू करने की मांग की।
1: आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं रखा? और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है।
0: उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध नकली विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940 पेटी शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग के अवर सहायक निरीक्षक दिलीप कुमार साहू ने बताया कि नगड़ी, रातू और धुरवा थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
2: छापेमारी में 940 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया। अभी जाँच किया जा रहा है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, जांच किया जा रहा है, जांच के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
0: जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और 19,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं।
3: एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जामताड़ा जिला के कर्माटांड थाना क्षेत्र में ग्राम सहजपुर में कुछ साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा इस सूचना पर रेड करने के दौरान घटनास्थल से 3 अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से जो बरामद हुआ है 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और लगभग 19,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। इन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभियुक्त में।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक। साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर दिए कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, धनबाद में गैंगवॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार। प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश। एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब जब्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो वासी पिछले कई सालों से बोकारो एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू होने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति तेज है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, गंदी राजनीति करने के बजाय सभी को एक साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है।
2: हम आग्रह करना चाहेंगे फिर उसे साथियों से कि अगर जरा सा भी बोकारो का हितेशी है, हमदर्दी है, तो सरकार में आप हैं, डीसी साहब से बात कीजिए और एक बैठक रख के इसको निराकरण हो, समाधान हो। कौन नहीं चाहता फ्लाइट चले? सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता यहाँ पे, विधायक है, यहाँ दो दो विधायक सत्ता पक्ष के है कि नहीं? हम बीजेपी के सांसद हैं, हमारे बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के यहाँ पूर्व हमारे नेता लोग हैं, सारे लोग बैठ के बात करके निराकरण निकालेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगा के हवाई अड्डा नहीं चल सकता है, जहाज नहीं उड़ सकता है, बैठ के समाधान हो सकता है, बैठ के ही हम लोग इसका निराकरण कर सकते हैं।
1: कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बताया, बोकारो एयरपोर्ट के संचालन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रोड़ा बना हुआ है।
3: कमजोर अगर कोई कड़ी है एयरपोर्ट शुरू ना होने में, तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। जनता को गुमराह करना एक बात है, राजनीति करना एक बात है, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होना चाहिए कि पब्लिक को सही पिक्चर दिखाना कि कब तक एयरपोर्ट शुरू हो, हम क्या क्या होमवर्क कर रहे हैं, कब तक शुरू होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये भी उनको बता देना। लेकिन हम एक प्रतिनिधि होने के नाते ये पूरा अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि एयरपोर्ट शुरू होगा, ये हम बहुत, इसके लिए मेरा बहुत विश्वास है कि मुझे जो प्रॉमिस मेरे गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मेरा प्रॉमिसेस है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो मिनिस्ट्री से जो प्रॉमिसेस है वो उनका भी बहुत क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का भी, कि एयरपोर्ट बोकारो में शुरू होगा, बोकारो में ही शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेटअप बना हुआ है।
1: दूसरी तरफ उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, एयरपोर्ट से व्यवसायिक उड़ान सेवा शुरू करने से पूर्व आवश्यक आधारभूत संरचना का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है।
4: भारत सरकार की एजेंसी से दोनों बैठ करके आपस में अब एक पेज पर है, बातचीत हो रही है और दोनों का कोऑर्डिनेशन है। कल से भी आए हुए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोग आए हुए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों ने टाइम लाइन दिया, बहुत सारे काम है जो वो 15 तारीख तक पूर्ण करेंगे और बहुत सारे काम है जो नक्शे वक्से का छोटा छोटा है वो 30 मई तक पूर्ण कर लेंगे। तो लगभग मई हमारा पूरा इनके आपस में कार्य को पूर्ण कर लेने का होगा। हमको लगता है कि जून में ये इंस्पेक्शन होकर ये रेडी रहेगा।
1: बोकारो में लगभग प्रतिदिन हो रही बेमौसम बरसात से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ किसान चिंतित हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। अब आपको सुनवाते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। श्रोताओं, आज हमारे महान गुरु गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिवस है। उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्होंने गीतांजलि देकर पूरे विश्व को भारत के बारे में बतला दिया था कि भारत कितना महान है, और उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए, गीतों की अंजलि। चलिए उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं साजन बिन सुहागन के इस गीत से। यशुदास का स्वर है और उषा खन्ना का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं माहौलिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणी महतो, रविवारी, वंदनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, आयुष महतो और गीतेश महतो। जमशेदपुर से हरजीत असी भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। चलिए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा संगीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। गुरुदेव को हमने श्रद्धांजलि दी इस प्यारे से गीत से, क्योंकि जीवन उसी का जीवन है जो दूसरों के लिए जीता है। चलिए अब अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है चित चोर, यशोदास की ही आवाज़ है और इस गीत को सुनना चाहते हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। जमशेदपुर से हजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर राही, श्रीमती सरिता गुहाणकर, प्रिंस एकाश गुहाणकर। बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गुहाणकर, श्वेता सुमित गुहाणकर, कुमारी ध्वनि गुहाणकर उपरी। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गुहाणकर, प्रणिता गुहाणकर, लाडला टुक टुक गुहाणकर। चलिए इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।
1: 18 साल का था 1984 में, तो जो उस उम्र में सब करते हैं मैंने भी किया। मुझे एक आई स्टार्टेड लाइकिंग अ गर्ल, लड़की का नाम गौरी था, तो मैं उनके घर के पास जाकर या जहाँ पे नॉर्मली लवर्स मिलते हैं गार्डन्स में या डिस्कोथेक्स में या रेस्टोरेंट्स में, जाकर उनके लिए गाना गाया करता था, विच वॉज़ गौरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया बारा आके यहाँ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आपको हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अब अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है दादा। यशोदास की आवाज है, उषा खन्ना का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ बाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा। ग्राम उघड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, समस्त महतो परिवार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, परविंदर बीरक, चेतन बीरक, मीका बीरक। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सबले पाटिल, राजदीप राशेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये नगमा।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: बड़ा परिवार जो तो बनवा बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में ना बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब वापस को रुड़ करना धरा रे नाकागी हम बोले रुड़ तो बनवे आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगल राय को गांव बरगरा आड़की थाना जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए
7: तुम बुरम सिंह काम सोए अनिता तमसोए भरूपा ऐसा करना ऐसा दुकुरा में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
8: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितमाई कोड़ा मैंने में उन्होंने ने बागिया तोड़ के जिन दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
9: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेता ना।
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह

0: निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5,00,000 तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4,00,000 तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: वाले भारतीय सेना।
1: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम आपके स्वास्थ्य में, माफ कीजिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद में। आप आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है क्रिमिनल, कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं पोंडाकाटा से नलसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, साजीव महली और विजय बेसरा। सरायकेला पाड़ापुर दिशा उली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि गो, सोना बाबू सोना, FM शिवा मुंडरी, सहावत टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। चले इस फिल्म का गीत का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम के। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमी मखानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शमीपुरी, बोधीपुरी, सुनीलपुरी, बीकेपुरी और आरएसपुरी। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहुरुबीना वसीम, नवासा अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, कोकिलवाला और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुजहत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुश्वेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं फिल्म ढाई अक्षर प्रेम का ये नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद पर। चांडिल ग्राम हारोडे से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमेहनी महतो और दीन बंधु महतो। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजूरा राठौर, विशाल राठौर। लक्ष्मणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक। मोपका भाटापर से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू। आदर्शनगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये नगमा। जावेद अख्तर के बोल हैं, राजेश्वर संगीत है और आवाज़ दिया है उदित नारायण ने।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद यही संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम का ये नगमा, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। शमीर के बोल हैं, आदेश श्रीवास्तव का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल धर्मपाल, महावीर संधु, रमेश मिगलानी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द और राहुल। दादरगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। गांव दलाई किला पोस्ट पदमपुर जिला सरायकेला से लक्ष्मण सोई, बिरसा सोई, राज सोई, अनिता सोई, मनीषा सोई, पूनम सोई और समस्त सोई परिवार। इन सब की फरमाइश पर आइए सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है बासीगर। अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजें हैं, गौहर कानपुरी के बोल हैं और संगीत है अनु मलिक का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं कुचाई बिद्री से केपी सोए, सरिता दुर्गामती, रेशमी राजकुमारी, विशाल मुन्ना और सनी। ग्राम सेराबेड़ा से बासी सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश अंसू और वीरो सरदार। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिपा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय आनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिक शर्मा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम रजनीगंधा में फिर से आपका स्वागत है श्रोताओं, मैं हूँ छवि। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए। कमाल खान और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं और इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विक्की गोप, राजू गोप, विनोद गोप, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी और अनामिका कुमारी। फ्रेंड्स कॉल ने करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनमिंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया। गांव फ्रांसिस से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। हासिर शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। अहमदनगर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, कृष्णा वर्मा और समर फुलमाली। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांचल राय। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सनम।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब आपको सुनाते हैं फिल्म खाकी का ये गीत, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में समीर के बोल हैं। और इस गीत को सुनना चाहते हैं चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमेहनी महतो, मनोमा महतो और दीनबंधु महतो। कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अनिल अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांचल राय। ओल्ड लिस्नर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पिली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता। राजनगर चौक गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्याशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन। जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब वड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे कानीरे, कार्तिक और युवराज। बड़ा बम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, श्याम देवनायक और देवेन बाबू। ग्राम गिलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनु, रमेश बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा और बेसरा परिवार। बड़ा बाम्बो गोपालपुर से संतोषी महतो, जय महतो। बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से इंद्रजीत ताती, मधुरानी दास और दृष्टि। गांव हड़ीरा से

राम सिंह कुंडिया, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जैविंद्र कुमार ध्रुव, गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, श्रीमती चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा मोनिका शिवम मौसमी संतोष और आनंद। चलिए इन सब के पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म खाके का ये गीत।

श्रोताओं, अब अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है से। आशा भोसले और साथी की आवाज़ें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, असमा सालिया, शुएब खान, पुत्रा मुजतबा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीबा का कुला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, कोर्ट रोड बागपत से यूसुफ आजाद, वसीला, साहिल आजाद, अंजुम नाज, रेलवे रोड गजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डीएच बच्चन, मछली गोदाम कैडीमुड़ा रायगढ़ से कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह, ऋषभ सिंह, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिपति तिवारी, विनेश कुमार।

0: मुसीबत कहाँ है मुसीबत? ऊपर नीला नीला आकाश, खुली खुली हवा और चारों तरफ पानी ही पानी।
1: हाँ, हाँ, हाँ, जब प्यास लगेगी ना तो पीना ये नमक वाला पानी। और

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम पेश कर रहे हैं फिल्म करण अर्जुन का ये नगमा। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम पंजौनिया तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश सत्येंद्र चंदसौलिया, आदर्श चंदसौलिया, आदर्श सार्थिक अलौकिक आराध्या चंदसौलिया, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार, चाईबासा अमला टोला से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद, सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन, बड़ा निमरी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार, छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार, न्यू कॉलोनी निम्बी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीश, अंशु और मुन्ना, मजगांव से अहमद हुसैन, शाह हुसैन, मजहर हुसैन, रहमत अली, अब्दुल्ला टोलर, आजम भाई, विरोची गोप, सबा अहमद, धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी और मास्टर शानू ध्रुवंशी। चलिए सबके फरमाइश पर हम सुनवाते हैं ये नगमा।

0: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120

0: विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की

0: घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताज़ा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान

0: जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इक्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाक़े के तहत आज SIR के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड IAS अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के IAS अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम TVK पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामनिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: TVK पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने TVK पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मदऊ किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। DMK पार्टी से इत्तेहाद से अलीहदा होकर कांग्रेस ने TVK पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: हालिया असेंबली इंतखाबात में TVK पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असेंबली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि VCK और IUML दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह TVK पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकान असेंबली की मजमुई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि CPI, CPIM, VCK और IUML के 2-2 अरकान असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खत्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने MIRV सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी दो रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले NDA सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और समाजी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंत

किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। सीबीआई के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और एलआईसी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थी। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जैचुरुज गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जैचुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाद से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमाए अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहरीन और दीगर सिविलियन माहरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक, इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका सिफारतकारी में मसरूफ है और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमेरिका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुक्ताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आब नाए हुरमुस और उसके अतराफ ताजा वाकयात के पसे मंजर में ये बयानात सामने आए हैं, जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। IMD ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वीं मुंबई बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी, मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में

राहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्ता खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सबो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुजश्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों के खिलाफ वर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकानी असम्बली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबरा जोसेफ विजय ने कांग्रेस वीसी के आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंदोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में।

दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियाँ हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करे जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें, आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे, पूरा तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा, यदि हम भी वही सब करने लगे तो। मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें

0: माउनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधि भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो, और बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है। वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहाँ तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहाँ पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।

0: ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
0: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए, और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि

0: मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अलग अलग देशों के दोस्त थे, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
1: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
2: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
2: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
4: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपस होना चाहिए, इतने इसमें वेट होना चाहिए, इससे कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे अपने शेखावटी की हवेलियाँ मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है।
5: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
6: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत कर

0: मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
2: आवास में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
3: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
2: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
3: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
2: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
4: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए हैं, अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से लेह में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
3: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
3: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
5: भारत में और भारतीय वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया

0: पे अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं। स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है। एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज के स्वर में चंद गजलें। तो चलिए हम गजलों का सिलसिला शुरू करते हैं कार्यक्रम महफिल में।

श्रोताओं, इन्हीं गज़लों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना तलत अजीज की आवाज़ में चंद गज़लें। तो आप इस कार्यक्रम से छवि को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों की रात। कार्यक्रम सुरों की रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कलाकार का ये नगमा, किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों की रंग छवि के साथ। जी हाँ श्रोताओं, जब प्यार होता है तो दिल उसी को पाना चाहता है और उसी के ख्वाब देखता है और दर्द भी उसी के लिए होता है। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कर्ज से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है कसम पैदा करने वाले की। सलमा का और पप्पी लहरी की आवाजें हैं, अनजान के बोल हैं और संगीत है बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे

दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।